देव जी महाराज जी गुरता गद्दी ते सुभायमान हुंदे ने। उस वेले गुरु अर्जन देव जी महाराज जी दे भ्राता जी बाबा पृथ्वी चंद ने जे विरोध किया, आप गुरु होने का दावा किया, श्री अमृतसर साहिब शहर के बाजार सड़कों के उपर चौरस्तियां दे विच अपने आदमी खड़े कर दिते कि तुसी ये प्रचार करना है संगत दे विच लुकाई दे विच कि असली गुरु पृथ्वी चंद है। उस वेले जदों भाई साहब भाई गुरदास जी प्रचार दौरे तो वापस आउंदे ने श्री अमृतसर, तो उस वेले उन्होंने माता गंगा जी दे कोलों वाहिगुरु जी माता भानी जी दे कोलों जदों सुनिया सारा वरतांत उस वेले, तो माता भानी जी ने यह दस्या सी कि सारा कुछ जिहड़ा है इत्थे, क्योंकि जदों आउंदे ने भाई गुरदास जी इतिहास विच एक गल लिखी है कि भाई गुरदास जी गुरु अमरदास जी दे समय गुरु रामदास साहब जी दे समय लंगरां दे विच देखदे रहे ने कि किस तरह बेअंत प्रकार दे लंगर तैयार करके छकाए जांदे सन, पर जदों भाई गुरदास जी वापस आए ने ते उस वेले उन्होंने देखिया लंगर की हालत जिहड़ी उह कुछ मस्तानी होई है, क्योंकि बहुता कुछ चढ़ावा भी गुरु घर नहीं आ रहा। लंगर दे विच कहिंदे उस दिन छोलियां दा प्रशादा जिहड़ा सी उह तैयार कीता भाई गुरदास जी ने छकिया, ते जाके पुछदे ने माता जी नूं कि इत्थे ते गुरु नानक साहिब जी दे घर विच बेअंत प्रकार दे लंगर चलदे ने, अज ये जिहड़ी अवस्था है ये किवें ये होई है। उस वेले सारा कुछ दस्या जांदा कि वड्डे पुत्र बाबा पृथ्वी चंद ने कुछ ही हरकत करदिआं अपने आप नूं गुरु होण दा दावा कीता, ते जिन्नी भी संगत दूर दुराडे तों आउंदी है शहर दे सारे ही मुख मार्गां ते अपने बंदे बिठाए ने, उह इह संगत नूं प्रचार करदे कि असली गुरु बाबा पृथ्वी चंद है। वो जिन्नी भी भेटा लैके आउंदी है संगत माया पदार्थ वो सारी बाबा पृथ्वी चंद अपने घर लै जांदा है, लंगर छकन ते ठहरन दे वास्ते गुरु अर्जन देव जी वल भेजदे ने। हुण जदों माया की कमी होई, संगत नूं स्पष्टता ना होई, गुमराह कुन प्रचार होया, तो फिर इस समय दे विच भाई गुरदास जी बाबा बुढ़ा जी दे सहयोग दे नाल होर सिखां दे सहयोग दे नाल फिर ये प्रचार करके दसते हैं कि असली गुरु धन गुरु अर्जन देव जी है। उस वेले भी बड़ा वड्डा योगदान सी भाई साहब भाई गुरदास जी का, तो देखो रिश्ते दे विच दोनों ही भाणजे लगते हैं, गुरु अर्जन देव जी महाराज जी भी तो बाबा पृथ्वी चंद जी भी दोनों भरा ने, तो गुरु अमरदास जी महाराज जी के रिश्ते दे विचों भाणजे ने, क्योंकि गुरु अमरदास महाराज जी के भतीजे ने भाई गुरदास जी, तो गुरु अमरदास महाराज जी की बेटी बीबी भानी जी दे जिहड़े फरजंद ने गुरु अर्जन देव जी महाराज। हुण इस करके इत्थे रिश्ते दे पक्खों नहीं भाई गुरदास जी देखदे, इत्थे एक गुरु दे घर विच ऐजे सेवादार बन के गुरु के सिख बन के फिर उत्थे जो सच सी उहनूं सच किया, जो झूठ सी उहनूं झूठ किया, पृथ्वी चंद नूं फटकारिया कि तू पिता गुरु रामदास जी दे हुक्मां दी भी अदूली कर रहा है, उन्हां दी पालना भी नहीं कर रहा। तो गुरु रामदास महाराज जी ने अपनी हयाती दे अंदर गुरु अर्जन देव जी महाराज जी नूं गुरु गुरता गद्दी दे उपर सुभायमान किया है, आप मत्था टेक के प्रवान किया है। फिर इस तरह भाई गुरदास जी ने उस तो इलावा भी होर जिहड़ियां अहम सेवावां निभाईआं, उत्थे आपां इह भी जाणदे आ कि धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की पहली बीड़ लिखण की सेवा भी भाई गुरदास जी ने गुरद्वारा रामसर साहब नेड़े गुरद्वारा शहीदां साहिब बाबा दीप सिंह जी दे जन अस्थान शहीदी अस्थान दे नाल ही गुरद्वारा रामसर श्री अमृतसर विखे है उत्थे कार्ज किया सी, बाणी दे ग्रंथ नूं लिखण की सेवा निभाई। उस तो इलावा भाई गुरदास जी ने जो अपनियां वारां दे द्वारा भी रचना दे द्वारा भी गुरु मत दा प्रचार जिहड़ा सी उह कीता, इस तरह ही इस लड़ी दे विच भाई गुरदास जी दियां वारां दी कथा वदे लड़ी विचार दे विच आपां
ਅੱਜ ਜੋ

सुत प्रभा है सुजुगत सुधा है सदैव स्वरूप है भेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है।

ब्रह्म तत्तंगा तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान गाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो ज्योत ज्योते नमो ज्ञान गाने

संगरव दुष्ट जतेठ उत्पाता सगल मलेश करुण काता जी आत शरणी भरे तनका दुष्ट दुत हवे मरे पुरख जमन पापरे ते हारे तनके तुम संगड़ सवटारे

दानिय दरे दे सच्चा होए कूड़ की मल उतरे तन करेगा सत होए सच ता पर जानिए जा सच धरे प्यार ना उस सुन मन रहसी है ता पाए मोख द्वार सच ता पर जानिए जा।

कहे स्तंभर स्वामी सच में अस सच रहे, साम कहे स्तंभर स्वामी सच में अस सच रहे, सब को सच समा।

कल मैं बेद थरबण हुआ नाव खुदा यलो पया नील वस्त्र लै कपड़े पहरे तुरक पठानी अमल किया चारे वेद हुए सचार पड़े गुणे तिन चार विचार पाओ भगत कर नीच सदाए तो नानक मुखंत रुपाए।

हमें अब कण पर एक गुण नाही, अमृत शाट बिकह बिक खाई, माया मोह परम पै भूली, सुत तारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथो सुनियो गुरु संग तो, तिहि मिलंत जम त्रास मिटाई।

देखते आन। जे को कह कर विचारो करते कह करने नाही सो मार तौ तर्म दया का पूत संतोख था ब्रख्या जन सूत। जे को बुझे होवे सचे आरु तबले उपर केता पहारु तरती होर पर होर होर तिस्ते पहारु तलय कमण जोर। जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुड़ी कलाम एहो लेखा लिख जाने कोए।

प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीता जग जीत आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुगे को वे।

मन माहे तिथे भगत वसे के लोह करे आनंद सचा मन सोए सच खंड वसे निरंकार कर वेख नदर निहाल तिथ।

परम सत्कार योग गुरु की साजी निवाजी गुरु प्यारे गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी सारे गज बज के फतेह बुलाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जुगो जुगे अटल चवर तख छत्र दे मालक गुरता गद्दी ते सुभायमान जागदी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने बड़ी अपार कृपा रहमत बख्शिश कीती है जो अज इस पावन दरबार दे विच दो परिवारों का सुमेल होण जा रहा है। ऐस खुशी दे मौके उत्ते दास खालसा दीवान सोसाइटी गुरद्वारा साहिब सुख सागर दे समूह सेवादारा वल्लों आप दूरों नेड़े आए हुए सारे पतवंते सज्जणां दा तहे दिलों धन्नवाद अते निघा जीवां कर रहा है। ऑन बिहाफ ऑफ खालसा दीवान सोसाइटी गुरद्वारा साहिब सुख सागर आई वुड लाइक टू वार्मली वेलकम ईच वन ऑफ यू who came here all the way to bless this beautiful couple who is now sitting in front of Shri Guru Granth Sahib Maharaj. Thank you so much everybody for coming here today, for being here as we witness two souls merging into one in the presence of our eternal Guru. So Sat Sangat Ji, as we are sitting in this darbar with Guru Sahib as the supreme power, so it becomes a collective responsibility to maintain the integrity and decorum of this darbar, which means absolutely no talking, listening to the kirtan and paying attention. For your convenience and to help you connect more deeply, we've got screens on both sides. For those who can read the Gurbani, please try to read and sing along. And for everybody else, we've got translations in English too. Sat Sangat Ji, sab to pehla jaruri benti hai. Apne jo niji vichar ne, galla baatan ne, kirpa karke unhan nu sankochan di kirpalta karo, chup da daan bakshish karo. अपनी सुरत अपना ध्यान असी शब्द दे विच जोड़न दा यतन करना है। जिथे असी सतगुरां दे चरणां विच सुभाग जोड़ी दे आउण वाले भविख दे लई अरदास बेनती करनी है, उत्थे ही सतगुरां पासों अपनियां झोलियां भी असी खुशियां अते खेड़ियां दे नाल भर के लिजाणियां ने। इस करके जिन्हां गुरमुखां नूं बाणी पढ़नी आउंदी है जां बाणी कंठ है उह वी नाल नाल गुरबाणी दे गायन करन। बाकी संगतां वास्ते स्क्रीनां लगियां ने, आप जी फॉलो कर सकते हो। आओ दोनों ही परिवारों की जानकारी दास साहब जी ने सन्मुख रख रहा है। काका जी हरमनप्रीत सिंह ढड्डा, सपुत्र सरदार नरेंद्र सिंह जी ढड्डा ते माता जी जसबीर कौर ढड्डा, परिवार का पिछलेरा पिंड ढड्डा अते इस वक्त परिवार ब्रैम्पटन ओंटेरियो तो इतने पहुँचा है। हरमनप्रीत सिंह दे दादा जी सरदार तीरथ सिंह जी ढड्डा अते दादी जी का नाम माता जगदीश कौर ढड्डा है। इन्हां दे नाना जी सरदार जगदेव सिंह जी मान अते नानी जी बीबी गुरदयाल कौर मान हन। एसी लड़का परिवार कमिंग टू द ब्राइड बीबा जी अमनीत सिंह, सपुत्री सरदार मक्खण सिंह जी अते माता जी संदीप कौर नागी। परिवार दा पिछलेरा पिंड जीरा डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर पंजाब अते इस वक्त परिवार बर्ड बीबी सी दा निवासी है। अमनीत दे दादा जी सरदार प्यारा सिंह जी अते दादी जी का नाम माता गुरबचन कौर है। इन्हां दे नाना जी सरदार जीत सिंह जी नागी अते नानी जी बीबी कुलदीप कौर नागी हन। सो इसी दोनों ही परिवारों की संखेप रूप विच जानकारी। हुण साध संगत जी आरंभता की अरदास होवेगी जिस विच केवल सुभाग जोड़ी अते इन्हां दे जो माता पिता हन अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर के हाजिरी लवाउणगे। बाकी साध संगत के चरणों में बेनती है कि अपने अपने स्थानों पर सजे रहो। सो मैं बेनती करूँगा हरमनप्रीत सिंह, अमनीत सिंह अते इन्हां दे जो माता पिता हैं अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाण। सो आई एम गोना आस्क द कपल एंड द पेरेंट्स प्लीज स्टैंड अप फॉर द अरदास। अरदास की सेवा निभा रहे ने ज्ञानी हरबंस सिंह जी, हैड ग्रंथी गुरद्वारा साहिब सुख सागर, उपरांत सतगुरां दे मुख वाक ज्ञानी रणजीत सिंह जी आप जी नूं सरवण कराउणगे। आओ प्रेम सहित हाजिरी लवाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

कृपा करो हरे। माज मोहल्ला पंजवा दिन रैन इकम का सतगुर प्रसाद सेवी सतगुर अपना हर सिमरी दिन सब रैन आप त्याग सरणी पवा मुख बोली मिठड़े वैन जन्म जन्म का विछड़िया हर मेलो सज्जन सैन जो जी हर ते विछड़े से सुख न वसन पैन हर पिर बिन चैन न पाइए खोज डिठे सब गैन आप कमाने विछड़ी दोष न काहू देन कर कृपा प्रभ राख ले होर नाही करन करेन हर तुद बिन खाकू रूलड़ कहिए किथे वैन नानी की बेनंती।

मेला दूजा दें दे थामो दिता चंगा मन मुख ऐसा जानिए सुरत मत चतराई ता की क्या कर आख बखाणीए अंदर बह के कर्म कमावे सोचो कुंटी जानिए जो धर्म कमावे तिस धर्म ना होवे पाप कमाणे पापी जानिए तू आपे खेल करे सब करते क्या दूजा आख बखाणीए जिचर तेरी जोत तिचर ज्योति बिच तू बोले बिन ज्योति कोई किश करो दिखा सिहाणीए नानक गुरमुख नदरी आया अरे को सुगड़ सुजाणीए पौड़ी तुद आपे जगत पाके तुद आपे धंधे लाया मोठ गौली पाके तुद आपो जगत खुआया तिशना अंदर अग्न है नै तिपते भुखा तिहाया सहसा ए संसार है मर जमे आया जाया बिन सतगुर मोह न टुटई सब थके कर्म कमाया गुरमत्ति नाम ते आई है सुख रजा जा तुद पाया कुल उदारे अपना धन जने दी माया सोभा सुरत सुहावनी जिन हर सेती चित लाया श्लोक महला दूजा अखी बाजों वेखना बिन कन्ना सुनना पैरां बाजों चलना बिन हत्थां करना जीबे बाजों बोलना क्यों जीवत मरना नानक हुकम पछाण कै तो खसमे मिलना मैला दूजा दिसै सुनिए जानिए साओ न पाया जाए रोला टुंडा अंधला क्यों कर लगे ताए पै के चरण कर भाव के लोइन सुरत करे नानक सियाणी ऐ कंत मुलावा होए पौड़ी सदा सदा तू एक है तद दूजा खेर चाया होमे गर्भ उपाय के लोभ अंतर जनता पाया जो पावे तू रख तू सब करी तेरा कराया एक ना बख्शे मेल लै गुरमत्ति तुदे लाया एक खड़े करें तेरी चाकरी बिन नामे होर न पाया होर कार विकार है कि सच्ची कार लाया पुत कलात कटंब है एक लिप्त रहे जो तुद पाया वो अंदरों बारों निर्मल सच्चे नाए समाया श्लोक महला पहला सोने के पर्वत गुफा करी कै पानी प्याल कै बिज धरती कै आकाशी उर्दरहां सिर भार पुर कर काया कप्पड़ पैरां तोवां सदाकार बग्गा रत्ता पीला काला बेदा करी बकार हो एक चीर रहां मल धारी दुरमत मत वकार ना हूं ना मैं ना हूं होवां नानक शब्द विचार महला पहला वस्त्र पखाल पखाले काया आपे संजन होवे अंतर मैड़ लगी नहीं जाने बारो मल बन धोवे अंधा भूल पया जम जाले वस्त पराई अपनी कर जाने होमे बिज दुकाले नानक।